0: This is what the history of human love feels like. Deep spasms of underground joy.
1: तो नमस्ते, KZMU Moab Community Radio से बोल रही हूँ दीपाली परमार। 90.1 और 106.7 FM, और मैं जब अपने घर होती हूँ पुणे में, भारत में, मैं www.kzmu.org ऑनलाइन यही रेडियो सुन सकती हूँ, और आप मुझे ये रेडियो पे सुनिए, शुक्रिया।
2: एंड ऑन 90.7 FM इन सैन वान काउंटी, यूटा।
3: DJ Little Ogre here. Join me every other Thursday, noon to 2 p.m. right here on KZMU for River Run Radio. We'll explore music from the back alleys of New Orleans, the bayous of Louisiana, and funky little spots all over the world. So join me for a River Run.